0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, दो साल से मोस्ट अवेटेड फिल्म 2.0 जिसका इंतजार भारतीय सिनेमा और पूरी दुनिया कब से कर रही थी, वो फिल्म आज हो चुकी है रिलीज। और रिलीज होते ही इस फिल्म ने मचा दिया धमाका। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने रिलीज होते ही काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहला रिकॉर्ड तो ये फिल्म हो रही है 11,000 स्क्रीन पर रिलीज। दूसरा ये दोस्तों कि इस फिल्म को सभी साइड से पॉजिटिव रिव्यूज मिलते आ रहे हैं और ये फिल्म तोड़ने वाली है सारे रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से बाहुबली और एवेंजर जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन आज के दिन की ऑक्यूपेंसी से भी ये फिल्म ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 90% की ऑक्यूपेंसी ली है। जी हाँ दोस्तों, साउथ में इस फिल्म ने 90-95% की ऑक्यूपेंसी ली है। वहीं नॉर्थ इंडिया में इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग थी वो काफी डल थी, लेकिन इस फिल्म के पॉजिटिव रिव्यू के बाद इस फिल्म ने अपने एडवांस बुकिंग में काफी इजाफा किया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के दूसरे दिन, तीसरे दिन के कलेक्शन और चौथे दिन के कलेक्शन काफी ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म ने अपने पहले दिन काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी पाई है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने 60-65% की ऑक्यूपेंसी हिंदी बेल्ट में पाई है। वहीं केरला में इस फिल्म को मिली है 90% की ऑक्यूपेंसी। तेलुगु में इस फिल्म को मिली है 95-100% की ऑक्यूपेंसी है, क्योंकि वहां पर सभी सिनेमाघरों के जो शो है वो हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए हैं। वहीं तमिल में भी इस फिल्म के जो शो है वो पूरे हाउसफुल चल रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो कहीं ना कहीं 500 करोड़ रुपए की हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इस फिल्म ने तमिलनाडु से कमा लिए थे 148 करोड़ रुपए और हिंदी तेलुगु और केरला से इस फिल्म ने कमा लिए थे 100 करोड़ रुपए। दोस्तों, अगर इस तरह के पॉजिटिव रिव्यू के बाद अगर ये फिल्म 500 करोड़ की एडवांस बुकिंग लेती है तो ये हिस्ट्री होगी और एक रिकॉर्ड होगा जो इंडियन सिनेमा के नाम हो जाएगा। दोस्तों, इस फिल्म में रजनीकांत के रोल की काफी तारीफें हो रही है। वहीं सेकेंड हाफ में अक्षय कुमार के कैरेक्टर की काफी ज्यादा तारीफें हो रही है कि अक्षय कुमार ने एक ऐसा विलन बनकर दिखाया जो आज तक इंडियन सिनेमा में कोई नहीं बन पाया। जी हाँ दोस्तों, वहीं शंकर सर की इस फिल्म को विजनरी बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है, कि उनका विजन है जो काफी अच्छा है और यह फिल्म हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से भी ज्यादा अच्छा बताया जा रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है इंडियन सिनेमा के लिए कि इंडियन सिनेमा में कम बजट की फिल्में इतना ज्यादा कमाई करती है और इतने अच्छे लेवल पर बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जहां इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में मिली है 65-70% की ऑक्यूपेंसी, तो यह हिंदी सिनेमा से कमा सकती है 35-40 करोड़ रुपए। वहीं साउथ में इस फिल्म को मिली है 90-95% की ऑक्यूपेंसी और यह साउथ सिनेमा से यानी कि तमिल में कमा सकती है 45-50 करोड़ रुपए। वहीं तेलुगु में यह फिल्म कमा सकती है 55-60 करोड़ रुपए और बाकी बचे केरला वगैरह जैसे स्टेट से यह फिल्म कमा सकती है 25 करोड़ रुपए। इसका मतलब यही है दोस्तों कि यह फिल्म अपने पहले दिन हिंदी से इंडिया से पूरा ग्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का हो जाएगा तकरीबन 200 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में तो यह फिल्म ने धूम मचा के रखी है और वर्ल्ड वाइड से भी यह फिल्म तकरीबन 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है एक दिन का वो हो चुका है 300 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस फिल्म ने बना दिया है एक रिकॉर्ड जो कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में नहीं बना पाई है, वहीं इंडिया की इस कम बजट की फिल्म ने बना के रख दिया है। आपको दोस्तों क्या लगता है, ये फिल्म अपना लाइफ टाइम कलेक्शन कितने करोड़ का कमा पाएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।

देख के तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: तपाईं रेडियो मर्सेन्जी एफएम 95 मेगाहर्ज